परम सम्मान सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा साहिब सुख सागर विखे शाम दे दीवाना विच आप संगतां गुरु चरणा दे नाल जुड़ करके अपने जीवन दे पलां नूं सफला बना रहे हो। आप सब संगतां नूं समूह सेवादारां वल्लों जी आया, आओ प्यार सहित गुरु चरणां दे नाल जुड़ करके पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। कीर्तन सरवण करा रहे हन भाई हरपाल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर साहब वाले अते उन्हां दा रागी जथा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: कले कले नो बेंती जे मसा सचे पातशाह को बहने हर कीर्तन विच ए मन नु कहना चाहिए भी पता नहीं अगला समा आऊगा कि नहीं आऊगा, अगला पल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, शायद ही ये लास्ट कीर्तन ही हो। जदों भी कीर्तन बंदा करे पूर्ण तौर पर समर्पित होने की कोशिश कर सकता है, बाकी नदर की गल है। कले कले जिन्हों जुबान मिली है ना बोल सकते हैं, एक बहाना तो लथ गया ना भी समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, सामने स्क्रीन लगी है सब कुछ आ रहा, मेरे ख्याल नाल मैं तो विखाई पैंदी नहीं, अर्थ भी आ रहे होंगे। बहुत प्यारे प्यारे शब्द ने जिहड़े साडी जिंदगी है, ये प्रैक्टिकल ता ही वरतेगा जे असी समर्पित होके अपने सारे ज्ञान इंद्रिय इस बाणी दे विच जदों समर्पण कर देंगे उदों इन्हां दी अवस्था बन जाए। जदों इह गावी है सुनी है मन रखिए पाओ, पहला तो गाणा ही है, गावत गावत परम गत पाई और टुट के गाणा, जिवें भूखे खावत लाज ना आया, भूखे नूं रोटी मिल जी ना, हुण सारे दिन ते तड़फ तड़फ के आए हैं महाराज रोटी मिली है, भूखे खावत लाज ना आवे तो हर जन हर गुण गावे, हुण इत्थे लाज लाज छोड़ हर के गुण गावे, इत्थे छड़ के सब कुछ गाउन लग पैंदा उच्ची उच्ची। क्यों गाउंदा है? ये कोई कलाकारी थोड़ी ना, ये गाउना रोना है अपने गुरु अगे कि मैनू बख्श लै, मैनू बख्श लै, बहुत प्यारा शब्द है। मेरे नाल गाओगे तो गाया जाना वरना रह जाना। कई मेरी शब्द पूरा हो जाता है, रसना तो पूरा हो जाता, सुरती करके एक लाइन भी नहीं गाई जाती, कई बारी सुरत पकड़ लवे ते और तो छड़ी नहीं जाती।
1: दया दया कर राखो हर जियो हर जियो,
0: पहला गालो फिर अस शुरू करांगे।

अच्छा पहला जो कली पंक्ति महाराज जी ने कही थे, हो सकता मन च डाउट होंदा कि महाराज जी क्यों इन्ना टाइम है 24/7 मैं यही काम करांगा हुण, तुसी ते कहिंदे हो भी इदां सिमर कर। जदों मैं पुछया कि महाराज जी क्यों, ते महाराज कहिंदे जे तू इदां करेंगा ना पुत, तेरे जीवन च कोई दुख नहीं रहूगा, तेरे जीवन च की होगा। ये हुण ज्यादा ज्यादा नहीं बाहर हो गए आपां इस गल दे। अच्छा हर बंदा चाहुंदा है दुख तो मेरा। अच्छा हुण एक प्रश्न भी पुछदे आ, आप जी ने सारी उम्र कदे अरदास कीती आ कि इत्थे कि महाराज जी मैनू दुख देवो? नहीं कीती। अच्छा कदे किते सुनी आ किते ग्रंथी साहिबान अरदास करदे होण जां तुसी सुनी होवे कन्नां तों कोई आया होवे आण के कहिंदा महाराज जी मैनू दुख देवो? प्रश्न अगला यह है कि जे अरदास जम्मण तो लैके हुण तक साडे वड्डे वडेरियां दी सारियां दी सुख दी सी, ते जीवन च की है, सुख है कि दुख है? फिर की मतलब बनता है? क्योंकि असी आ स्टैप पूरे कंप्लीट नहीं किए। की कहा सी? कंप्लीटनेस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनेट टू हैप्पीनैस। असी चाहते हाँ असी आईए $5-10 महाराज जी दे भेट करिए, ते महाराज नूं कहिए महाराज जी कोई खेड वरता मेरे दुख सुखां च बदल जाण। जादू की नगरी दे विच डॉक्टर इदां नहीं करता। डॉक्टर को जाने हैं तो दुख दस दें, डॉक्टर तेनों दवाई देता है, आ दवाई है सर्व रोग का औखद नाम। महाराज कहिंदे मैं मेरी गरंटी है पुत्र तू जा तू आ दवाई खा इदां खा ते तेरे दुख दूर होणगे। ये महाराज जी की गरंटी। अच्छा अहीं इत्थे सैटिस्फाई नहीं होए, अहीं कहा महाराज जी जे 24 घंटे करांगे ते बस इन्ना ही मतलब दुख ही मिटने, बस होर कुछ नहीं, बस महाराज जी दुख ही मिटने होर कुछ नहीं? महाराज कहिंदे नहीं होर भी दवांगे बख्शांगे। की कहिंदे फिर?

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पाशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गना निकले त्याय फिर अंगद करते अमरदास संदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय चिट्ठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना दावताए सत्थाई हो सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सत्थाई हो सहाय दसा पातशाही की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके खालसा जी बल जी हिन माणिया के मान ताणिया के तान न्योटन की ओर सचे पिता वाहिगुरु आप जी हजूरी विच सोलह सजी पाठ होए हैं भुजकन की खेवा बख्शनी अगे तो शुद्ध स्पष्ट माणी का बल बख्शना जी आप जी की विशाई तैयार है जी सुखासना पास विराजमान होवो जी संगतों ने खुशियां बख्शो अखर वादा घाटा भुजक माफ करनी सरबत काज रास करने सही प्यारे में जिना मिलिया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुख पक्षार असंख असंख मोहन निवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुत पावा साई पलीकार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गढ़ वढ़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलीच मल पख खाहि असंख निंदक सर करै भार नानक नीच कहै विचार वार न जावा एक बार जो तुत पावै साई भलीकार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होय अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण वखरा सिर संजोग वखाण जिन्ह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुरमाए तिव ते पाहे।

पातशाही दशमी शपय संत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात पातना हिंदे रूप रंगर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूर्तन भव प्रकाश मितोज कह जाय।

चक्कर बिक्कर फिरे चित्रचक मान ही पुरती लोग चाहो देखे बिखाए जग जापई देह जाप आदे अनाद मूर्त स्थाप्यो सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्वेश्वर च्यो सुयम कहो गाड़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख दे धर्म धाम सो भ्रम रहत भूत अलख भे संग्राग नरंग जा कह जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी कान उस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वभंजन आदि रूप सोतांगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वंता सर्वहंता सर्वतेन भेद सर्वशास्त्र जान जय रूप रंग रेख

चतुर्चक्रकर्ता चतुर्चक्रहर्ता चतुर्चक्रदाने चतुर्चक्रजाने चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रप्रति चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रकाले चतुर्चक्रपासे चतुर्चक्रवासे चतुर्चक्रमान्ये चतुर्चक्रजाने दानिये चतुर्चक्र मानिए चतुर्चक्र दानिए चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन जाय न चित्र न मित्र प्रे पवित्र प्रति सदि सहद्र सहकृष भगवती शंत प्रसाद कस्ते कि आओ श्री देश के आ भिज पेशा के आ गन करमे के आ पंच परमे के आ भिज लोक के आ दित शोक कह के आ भूत भरने के विभूत करने के रागन प्रवाह के धर्म तो जा के आ शोक भरने के सुरबा भरने के जगत कृति है के शत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपाहन उपे के आदि है के आ भेवे के

सर्वकली है, कि सर्वमंगली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौन है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र अधीन है, कि सर्वत्र अनीन है, कि सर्वत्र जा हो, कि सर्वत्र पा हो, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाला है, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र पेखी, कि सर्वत्र काज है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र सुख है, कि सर्वत्र पोख है, कि सर्वत्र त्राण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानी, कि सर्वत्र जापी, कि सर्वत्र थापी, कि सर्वत्र पान है, कि सर्वत्र मान है, कि सर्वत्र इंद्र है, कि सर्वत्र चंद्र है, कि सर्वंकली में के परमंक ही में के आकल आलाम में के साहिब कलाम में के हुस्न उर्वजू है, तमाम उर्वजू है, हमेशा सलाम में सली खत मुदाम में गनी मुल से कस्त है, गरीब उल परस्त है, बिलंद उल मकान है, जमीन उल जमान है, तमीज उल तमाम में रजूल निदान है, हरीफ उल अजीम में रजायक यकीन है, अनेक कुल तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीज उल निवास है, गनी मुल के राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, स्वजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, आगाध है, अनूप है, उंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिबाध्य गंज अगाध्य सुपंग सर्व भाग्य सुसर्वानुराग है, त्रिभुक्त स्वरूप है, अशिज है, अशूत है, कि नरकम प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी शांत

सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाशी है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है।

अकलं कृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग पर्याय।

नमो इंद्र इंद्रे अनादम बेपुते कलंकर रूपे अलंकर अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपुआ जुआ नास अकाश गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेघ नाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरक नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग अगंजे अलेखे पुजंग पर्याव।

नमासोतुल प्रणाम में समस्तुल प्रणा से अगंजुल अन्ना में समस्तुल निवास से निर्कामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणा सी सुतर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रम प्रणासी क्रीमुल को निंदा समस्त निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पहुते स्वयं पवसु पहु

जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन ही आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मत कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान है कट कट के पट पट की जान है जब युद्ध करख करा करता रा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे निराल जान वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदा नीना नाद असमता का मूल उचारत भेदा जा को पेव न पावत बेदा

कृपा दृष्ट तन जाहिने हरि हो ताके ताप तन कमहि हरि हो रित सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई।

खड़ग के मैं शरण तिहारी आपा दैले उबारी सर्व ठौर मो ओ सहाई दुष्ट दोख तेले बचाई।

सुने गुंग जो या सुर सुन पावई सुने मूर्त तलाय चतुरताय आवई दुख दर्द भव निक न तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौ पई को कहै चौ पई संबत सत्रह सहस पण जय अर्थ सहस पुन तीन कहित जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम नहीं पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बपेद कहे हम एक न जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तो है बखान्यो दोहरा

जी ओ निर्मल बारो निर्मल बारो तन निर्मल नियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुँच नाही मनसा सत समाणी जन्म रत्न जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतरियात्मै संभाले आप छड सदा रहे परणे गुर बिने वरना जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।

हर मंगल गाओ सखी ग्रेह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापाए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पर जापाए।

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे।

दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ तुमरी शरण तुम्हारी आस तुम ही सज्जन सुहेले रखो रखन हर दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आस तुम ही सज्जन सुहेले।

गुर की हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वा सब बेक बुद्धि सुख रहण विहानी, गुरमत नाम प्रगासा, हर हर अनद पया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए, राग सूही महला चौथा, चंत घर पहला एको ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए, अवगुण विकणा गुण रवां बलराम जियो, हर हर नाम त्याए, गुरबाणी नित नित चवां बलराम जियो, गुरबाणी सद मीठी लागी, पाप विगा विकार गवाया, हों मैं रोग गया भव भागा, सहजे सहज मिलाया, काया सेज गुर शब्द सुकाली, ज्ञान तत् कर भोगो, अंधन सुख माणे नितर लिया, नानक तुर संजोगो, सत संतोख कर पाओ, कुड़म कुड़माई आया बलराम जियो, संत जना कर मेल गुरबाणी, गावाइया बलराम जियो, बाणी गुर गाई परम गत पाई, पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड परम गवाया, होमै पीर गई सुख पाया, अरुगत पय शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पचाता, नानक गुणी गहीरा, मन मुख विचड़ी दूर महल न पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर कूड़ वे हाजे, कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै, बिन सतगुर मग न पाया, उजड़ पंथ परमै गवारी, खिन खिन धक्के काया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मिलाए, जन्म जनक के विछड़े, जन मेले नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हृदय धन उमाहिया बलराम जियो, पंडित पदे आणपति, वह वाचाया बलराम जियो, पति बचाई मन वजी बधाई, जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बल बाल सुखाई, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सब नवतन सद नवतन बाल सुखाई, नानक कृपा करे कै, नानक कृपा कर कै, मेले बिछड़ कदे न जाई, सूही महला चौथा, हर पहलड़ी ला

मन चिंदया फल पाया स्वामी हर नाम बजी वधाई हर प्रभ ठाकर काज रचाया तन हिरदय नाम वेगासी जन नानक बोले चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही छंत महला चौथा घर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रपाए मिलिया सहज सुभाए अंदन भोग भोगे सुख होवै शब्द रहे लिवलाए वड्डा भाग गुरपुरा पाईऐ अंदन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भय पवित्र शरीरा दुरमत मैल गई भ्रम भागा होमै बिनटी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर हो आवासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम परगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अग्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानण घर मंदर सुहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख भी आहन आया गुरमुख हर पाया सा तन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जियो आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व ज्ञान मनाई नानक प्रभ पाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाए राग सूही छंत महला चौथा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनों गुण गावै गोविंद घेरे राम गुरमुख मिल रही है घर बाजै शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब ताई अहनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई अंदन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणै अवर न जाणै दूजा समय रब रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रब रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई गुरमत सच पाईऐ सहज सुमाईऐ तिस बिन अवर न कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आप लय मिलाए नानक सो प्रभ सबदे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मन मुख पार न होई राम अंतरे होमै ममता काम क्रोध चतराई राम अंतर चतराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावै झूठा खावै अंत गया पुछताया बिन नावै को बेली नाही पुत कुटुंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा आगै साथ न जाई हो पूछो अपना सतगुर दाता किन बिद दुत्तर दरिया राम सतगुर पाए चलो जीवतया इव मरिया राम जीवतया मरिया भौजल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बडभागी सच नाम लिवलावै मत प्रगास भई मन मानिया राम नाम बड़ियाई नानक प्राप पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुणता से धन धन गुरु बड़ पुरख है मैं दसे हर सा बासे बड़ भागी हर पाया जन नानक नाम वेगा से गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी बचुन्या मिल शब्द गुरु पर रब नाहा हो तुझ बाजो करी उडीणिया ज्यो जल मी बिन मीन मराहा बड़भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन

परम सत्कारयोग गुरु की साची निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का समेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए सारे पतवंत सज्जनों का तहे दिलो धन्यवाद निघा जीव ए कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for being here, for blessing this lovely couple. Today it's not just a ceremony, but it's a blessing. When two souls merge into one in the presence of our eternal Guru. So Satsangat Ji, as we're sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes a collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar, which means absolutely no talking, listening to the kirtan, and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Satsangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai. अपने जो निजी विचार ने गल्लां बातां ने कृपा करके उन्हां नूं संकोचन की कृपालता करो, चुपता दान बख्शिश करो, अपनी सुरत अपना ध्यान शब्द दे विच जोड़न दा यतन करो। जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आने वाले भविख दी अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही सतगुरां पासों असी अपने झोलियां खुशियां ते खेड़ियां दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी कंठ है जां बाणी पढ़ सकदे हन उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि वह भी नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीन लगियां ने फॉलो कर सकते ने जी। आओ हुण दोनों ही परिवारों की जानकारी आप जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी प्रभजोत सिंह धालीवाल, सपुत्र सरदार रविंदर सिंह धालीवाल अते माता जी हरविंदर कौर धालीवाल परिवार का पिछले पिंड हंबड़ा जिला लुधियाणा पंजाब अते इस वक्त यह परिवार लैंगली बीसी का निवासी है। प्रभजोत सिंह दे दादा जी का नाम सरदार दलीप सिंह जी धालीवाल अते दादी जी माता जसवंत कौर धालीवाल। इन्हां दे नाना जी का नाम सरदार जोगेंद्र सिंह जी गिल अते नानी जी का नाम माता करमजीत कौर गिल है। सो इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा जी सिमरन कौर थियाड़ा, सपुत्री सरदार हरबंस सिंह जी थियाड़ा अते माता जी मनजीत कौर थियाड़ा। परिवार दा पिछले पिंड बडियाल जिला होशियारपुर पंजाब अते इस वक्त यह परिवार भी लैंगली बीसी का ही निवासी है। सिमरन कौर के दादा जी का नाम सरदार निर्मल सिंह जी थियाड़ा अते दादी जी का नाम बीबी गुरदेव कौर थियाड़ा है। इन्हां दे नाना जी सरदार हरी सिंह जी अटवाल अते नानी जी का नाम माता मोहिंदर कौर अटवाल है। सो इस दोनों ही परिवारों की संखेप रूप से जानकारी। हुण आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी अते इन्हां दे जो माता पिता हन वह अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के अरदास विच हाजिरी लवाउणगे। बाकी सतसंगत जी आप जी रचाना विच बेनती है कि प्रेम सहित सजे रहो। समगनास्त द कपल प्रभजोत सिंह सिमरन कौर एंड देयर पेरेंट्स वेयरएवर दे आर सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के अरदास विच हाजिरी लवाउणगे। बाकी सतसंगत जी सजे रहो। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर उपरंत सतगुरां दे मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण करवाउणगे। आओ अरदास हो रही है जी, एकाग्रता बख्शिश करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

देखो एक समना इस परपंच में साचे नाम की वड्याई मत को तरो गुमाना सत

संत जन हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया

मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया अन दिन हर लिब लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी वादाई

नित हर हर जापे राम। मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम। जा नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापे राम। मानस जन्म हर पाइये हर रावण बेरा राम। गुरमुख मिल सुहागणी रंग होए कनेरा राम। जिनी

गुरपुरे प्रभ पाया, हर हर लेवलाई रामा, अज्ञान अंधेरा कटिया, जोत प्रगट।

मुगध मलाया कर कृपा तारी रामा। धन धन गुरु सावास है जिन होमे मारी रामा। जिन बड़ भागियां बड़ भाग है

मन की त्यागी बिनवंत नानक सारन स्वामी संत संग लिव लागी बराबर महला पांचवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बचतरा।

रिद सिद्ध सुद्धा रस अमृत भगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार बंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखियो

अब एक निमख पालक ना त्यागिए, गै कंठ लाइए नाल जाइए, चन रज मन पागिए, भगत ठगौरी पाए, मोह अनत कतु ना तावे, बिनवंत नानक मेल संग सा।

कार नाठे देवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर मत नासी ब्रह्मांत नानक पई निर्मल।

दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करने हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आपे करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन हर रस पिया बलाबन महला पंजवा शांत

निधि पियो सुख सागर प्रभ पेठिए नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ

सो प्रभ साधि ही सेविए पाइए फल मंगे राम। नानक प्रभ शरणागति जप अनत तिरंगे राम। एक तिल प्रभु ना बिसरे जिन सब कुछ दीना राम। बड़भागी मेला बड़ा गुरमुख फिर चीना राम। बा पकड़ तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल।

गोविंद के सब ईश भजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबु का स्वामी राम, रस पिन्नड़िए अपने राम संगे से लोयन नीके राम, प्रभ पेख पेखत ईशा पुनिया मिल साज।

ना पाए, पखंड भगत ना हो वही, पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए, नानक गुरमुख आप।

तुम नदर खुद का दवाई है रे राहो। बुबारे बूढ़े तुरने पैया सबू जम ले जाई है रे। मानस बुपड़ा मूसा मानस बुपड़ा मूसो कीनो मीच बलिया खइए रे। तनमंता और निर्तन मन ही ताकि कुछ न कानी रे। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे। हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा नरारी रे। आबे न जाए ना कबू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्तर।

अबे न माता सो कबू न माता, कै कबीर रामे रंग राता, बलाबल ग्रह ताज बन खंड चाहे जाइए चुन।

तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल कवाड़ रहो तुम तनी ता तुम तन तनी उदार त्यागी सर्वनन सुनियत सो जस तुमार मांगू कै रंक सब देखियो।

देख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कबट नित हर भज बबरे। रहो जियो तू जाचे, सो त्रिवन त्रिपवन पोगी, कै कबीर कैसो जग जोगी। बलाबल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बसारे, किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहाँ करे बिचारे। रहो त्रिग धन त्रिग धन त्रिग हे माया, त्रिग त्रिग मत बुद्ध फुन्नी फन्नी, इस माया

मन सब सुख नौ निद ताके सहज सहज जस बोले देव रहो तब ए मत जो सब में पेखे कुंठल गांठ जा।

दुख बसार सुख अंतर लीना, ज्ञान अंजन मोक गुर दीना, राम नाम बिन जीवन मन हीना, राव नाम दियो है नाम दे सिमरन कर जाना, जग जीवन सियो जियो, जग जीवन सियो जियो समाना। बलावल बाणी रविदास भगत की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, दर्द देख सब को हसे।

विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निचल आसन बेशमार डिग न डोले कतु न तावे गुर प्रसाद कोई महल पावे पैं पैं मोह न माया जाल सुन समाध प्रभु कृपा ताका अंत न पारा बार आपे गुप्त आपे पसार जाके अंतर हर हर स्वाद कह न जाई नानक बिसमाद राम की मेला पंजम पेड संग पार मन चित आया संगत कर संतोख मन पाया संतां चरण माथा मेर पाउत अनक बार संतां डंडाउत ए मन संतन के बलिहारी जाकी उठ गई सुख पाया राखे कृपा तारी रहाओ संतां चरण धोए तोय पीवा संतां दर्शन पेख पिख जीवा संतां की मेरे मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राखिया पड़दा संत प्रसाद मोहि कबू न करदा संता संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध प्रगास गहरंग वीर अपार गुणतास जे जन सगले प्रतपाल नानक संतां देख निहाल राम करी मेला पंजमा तेरे काज ना ग्रह राज माल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै हर हर नाम संग तेरा चलै राम नाम गुण गायले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहै हम सिमरत जम कछु ना कह रहाओ बिन हर सगल निरार्थ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शाप जाप मन सूखा इहां उहां तेरो जन तेरो उज्जल मुखा कर कर थके बड़े बड़े रे किन ही न किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नानक दास ताके कुर्बान राम करी मेला पंजम छिंचे सर्व दे दुख लोग तेरे काज ने अवरा जोग कर अहंकार होए वरते अंध जमकी जेवड़ी तू आगे बंद

कैसे गवे। आपस को जो भला कहवे तिसे भला ही निकट न आवे। सर्व की रेंजा का मन होए कौन नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए।

प्रभ के गुणगाओ सास सास प्रभ तुम है त्याओ चरण कमल सिंह लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एकोट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुखोए हरस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जंत ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरण अन प्रभ त्याग अंतर प्रकाश अन दिन लिवलाग बड़भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम मुरते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल मंदन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दूप भ्रम गया इश्पुनी सरदा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना पाना है सो क्यों बिसरे जे किया जाना है सो क्यों बिसरे जिन सब किस जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों बिसरे जे व्यक्ति काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गंढ है गुर पूरे तत् एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आव जपो अवरै नाम जपाओ भक्त पाए तरिए संसार बिन भक्ति तन हो सिशार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का हो तनास नानक ना जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रह चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए भक्तना के मंत्र रंग बिरला को उपावे संग एक बस्त दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक शांद दीन दयाल भक्त वशल सदा कृपा अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल

अवस्त परी। जब अकार हो कशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जो तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध के संकमाद। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होत परम। अपन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गने। जब एक कहे हरक में अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कह हो कत ठाए। जब अपह आप अपनी जोत तरह तब कौन निरार कौन कत डरह। अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अग व्यापार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म बंद को कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कह हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त कछ पूछ लेखा। जब नाथ निरंजना गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ये चर्जा नानकी अपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरख पत होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता। जह निरंजन रंग का निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिंद्र लगत कहो कीस। जह जोत रूपी जोत संग समावे तह किसे पूख कौन तृप्तावे। करण करावन करने हार नान करते का नाह सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत पाई। जह सर्वकला पे प्रवीन तह वेद कतेब कहाँ को चीन। जब अपन आप उतारे तब सगन अप सगन कहाँ विचार है। जह अपन ऊंच अपने आप नेरा तह कौन उठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जहाँ शल अशेद या पेस माया वहाँ से व्याप्त माया। आप उसको आपे आदेश तेह गुण का ना ही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुन रहे हारा। बो बेंत उच्चे उच्चा नानक आप उसको आपे पहुँचा। जय आप रचियो प्रपंच अकार तेह गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन खेल आप कर देखा खेल संकोचाय तो नानक एक है। जय अवगित भगत तह आप जय पसरे पासार संत प्रताप। दूह पा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बने। आप है कौ करे अनचोज आपे रस भोगन निर्जोग। जिस पावे तसी अपने

त्यागो त्रंग संत जना की तूर मर मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पीवो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कुमावत होत उधार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर लंग रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनद करै प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरे तिन के साथ है नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरण आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम राम सुन रसना कहते कर प्रसाद प्रभ धारी नानक बिही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसै सो होत निधान सर्विशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोय सब तुज पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जसह प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम।